राम गुरु अखां बंद करके मन च वसाया करो वाहगुरु सदा मन वसावे गुरु।

जिन्नर चाई रंगी रंगी पंती कर कर जिनसी माया जिनु पाई कर कर देखा कीता आपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह शाहपत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोए केवड़ वड्डा डिठा होए।

सौ पुर के निरंजन हर पुर के निरंजन अगम्मा अगम अपारा सबत्या में तुझ जी हर

अनंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना, जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुरबान। हर त्यावै तुद जी से जन जुग मैं सुख वासी, से मुक्त पाए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी, तिनका पाओ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करें हर पूजा जी, तप तपै जपै बेअंता। तेरे अनेक पढ़े बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जा।

करो व्रत पारा, हमरे दुष्ट सबै तुम गावो, आप हाथ दे मोहे बचावो, सुही बसै मोरो परवार, सेवक सिख सबै कर।

और भजन की रहे प्यासा, तुम्हें शाड़ कोई अबर ना त्याहू, जो अबर चाहू सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन शत्रु हमारे मारिया है, आप हाथ दें मुझे उबर है, मरण काल का त्रास नवर है, उज्जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुजु करे हो रक्षा, राख लियो मैं राखण हारे साहे।

ब्रह्मा बबतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी सब कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब रोग सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैन जशन उपजायो आद अंत कै अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सगल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेवकन सुख दियो सत्रन को बल मो बद कियो कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचे रिया स्थूला सपर कृपा दिष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन्न कट कट गे बट बट की जन्न जबद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब आ करख करत हो कब हूं तो मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन सठ सब तारै आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरियालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेवना पावत भेदा ताको कृपाहन अनुमानत महा मूड कश भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पिव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुय तेती तुमरा लखा न जाहे पसारा केह बिद सजा प्रथम संसार एका रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कही पुप्पा अंडज जेर सेतज किन्नी उत्पज खान बहर रच दीनी कहूं फूल अराजा हब बैठा कहूं सिमट भयो संक्रे कैठा सगरी सिष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अपरिच्छा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सगल मलेश करो रणकाता जे अस्तु तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्यय है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहे सब काल दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल कृपा दृष्टन जाहे न हर हो ताके ताप तनक मैं हर हो रिद सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शवा सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दार्द दुष्ट दोखते रहा खड़ग केत मैं सरन तिहारी आभा दैलहु उबारी सर्व ठावर मोह सहाई दुष्ट दोखते लेहो बछाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ गिरा पूर्ण सब राता केल विख सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता

सुने मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भाव निकना नर के रह याकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पणिज अर्ध सहस पुंतीन कहिज भादर सुधी।

मन करम बचन विचार। मैं नागने शय प्रथम मनाऊ, किशन बिशन गबू न त्याऊ, कान सुने पहचान ना तन सोल बिलागी मोरी भगिन सौ। महाकाल रखवार हमारो, महालो मैं किंकर थारो, अपना जान करो रखवार, बाह गहे की लाज विचार। अपना जान मुझे प्रत परिया, चौन चौन सत्र हमारे मरिया, देख तेग जग में दहू चल, राखा मह और ना दल। तुम

जब ते तुमरे तब ते कौआग तरे नहीं अन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक रामान्यो सिमृत शास्त्र वेद सबै बहुभेद गए हमें कना जान्यो श्री

दास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाओ ना जाने मेरा अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाओ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिए कर नौ निध आवै ताए सब थय सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थे होना जी सहाय दसा पातशाहां दी जो धन धन धन श्री ग्रंथ साहिब दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तर खालसा जी साहब बोलो जी पांच प्यारे चार साहब जादे चाली मुक्ते हठिया जपिया तपिया जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडट किया तिना प्यारियां सुचियारियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसा जी साहब बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणां ने धर्मे सिर दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाईयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुआसां संग निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान तर खालसा जी साहब बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके खालसा जी साहिब बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु चिते आवै चिते आमन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रथिया रहाय देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नु सिखी दान के दान रहत दान बबेक दान विसाव दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी साहब बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत परदे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार दियो श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुधाम जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान प्यारी खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे मन सतगुरु नेताणियां दे तान सतगुरु नेओटियां दी ओट सतगुरु धन धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी दे चरण कवलां पास अरदास बेनती जोधरी है गुरु पातशाह आप जी दी अपार कृपा सदका आप जी दी प्यारी संगत वालों शामा वेले दे दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना विच आप जी दे हर जस गुरबाणी दे कीर्तन होए गुरु पातशाह सिमरन होया सेवा करदिया सिमरन करदिया बाणी पढ़दिया पातशाह बेअंत भुला चुका हो गया अनजान बच्चे समझ के मुआफ करना अगे तो एक मन एक चदबंदगी शुद्ध स्पष्ट बाणी पढ़न दी सुमत बख्शना गुरबाणी वर्गा जीवन सुभा अपने वर्गा बख्शिश करना आप दे दर घर विखे आईया समूह संगतां दियां हाजरियां तिल फुल भेटावां दर ते कीतियां सेवावां दर प्रवान करनियां सारी संगत नूं संपूर्ण देह रुगता दी दात चरणां दा प्यार गुरसिखी जीवन बख्शिश करना बच्चियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना बच्चियां नूं माता पिता दे आग्याकारी बनाउणा उच्ची विद्या दा दान बख्शिश करना अमृत वेले दी संभाल बख्शिश करना बाणी बाणे नाल बण आवे पातशाह आप दियां प्यारियां संगतां वल्लों आप दियां बख्शियां होईयां दातां विच्चों पंचम एकड़ा प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होए परवानिया प्रसाद सा संग दे रसनी लायक होवे जो छके तेरा नाम वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जपे गुरु पातशाह सारी संगत वल्लों आप जी दे चरणां विच अरदास बेनती जोधड़ी है गुरु पातशाह जी आप दे दर कर दे प्रीतवान भाई साहब भाई जगतार सिंह जी नूं संपूर्ण देह रुगता दी दास चरणां दा प्यार गुरसिखी जीवन बख्शिश करो पातशाह जी अपने कर्मा करके गुरु पातशाह मुश्किल आई है तुसी कृपा करनी है सिर ते मेहर भरिया हथ रख के
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਛੇ ਪੌੜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਕਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਪਾਵਨ ਅਟਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਖ ਆਸਰਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਜਨਮ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।

साध जागर कीरत आखिया करते का हो बिचारो तिद गर गावो सोहेला सिवरियो सृजन हारो तुम गावो मेरे निर्भो का सोहेला हाँ वार जे सोहेला सदा सुख होए राहो नित नित जीड़े समालियन देखेगा देवनहार तेरे दाना कीमत ना पवाए तिस दाते कवन सुमार संबत साह लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजन सी सिड़ियां जो होवै साहिब सुमेल कर कर एहो पहुचा सदले नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से दे आवन रागासा महला पहला छे अगर छे गुर छे उपदेश गुर गुरे को वे सने बाबा जा घर करते कीरत होए सो कर राख बढ़ाई तो रहाओ विस्वें चसियां कड़ियां पहरा थिती वारी माँ हो हुआ सूरज कुरत अनेक नानक करते के केते वेस राधना श्री महला पहला गगन माय थाल रवचंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती

सहस मूरत ननायक तोहि, सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध चलत मोहि, सब में जो जोत है सोए, तिस दे चान सब में चानन होए, गुर साखी ज्योत प्रगट होए, ज्योतिस पावे सो आरती होए, हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो, अंधन मोहि आय पियासा, कृपा जल दे नानक सारं को, होए जाते तेरा नाए वासा, राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर वो परिया, मिल साधु खंडल खंडा है, पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हरलि मंडल मंडा है, कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है, रहाओ साकत हर रस साधना जानिया, तिन अंतर हो मैं कंडा है, ज्यों ज्यों चलै चुभै दुख पावै, जम काल से सिर डंडा है, हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पव खंडा है, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है।

ज्ञानी जिसे जगाए पिया वह एहरस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोही ब्याज हर गुरते मने बसेरा निज घर महल पावो सुख सहजे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

बै महा उदास तपी सरथी बै अगन माए होमत प्राण कनक सभै भरभूम दान न्योली कर्म करै बव आसन जैन मार्ग संयम अत साधन।

तेजन सह समात सुनंदा कैसे मार्ग पावे करके लिह ओढ़ निभावे कहाँ बुझार्थ बुझे डोरा निसकिये तो समझे पूरा कहाँ बिसन बद गावे गुंग जतन करे तो भी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हा उस गबन करतार करुणा में दीन बेनती कराय नानक तुमरी कृपा थराय संग सहाय सु आवाय न चीजो बैराही तासो प्रीत बलवा के गृह पीतर बस अंधकेल माया रंग रसाय दृढ़कर बने मने प्रतीत काल न आवे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालुभ त्रो या

जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाचे पावे एक बस का निघोट गवाव एक बीना दे दस भी हर ले तो मूढ़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको की जय सद नमस्कार जाके मन लागा पर मीठा सर्व सुता हूँ मन मुठा जि जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंत शापनी दे रास खात पीत बरते आनंद उलास अपनी अमान कश बहुर शाल अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीता भी खोबे बहुर का विश्वास न हो वह जिसकी बस्त आज्ञा राखे प्रभु की आज्ञा माने माथ है उसते चौगन करा नहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सर्प हो सर पर होबत जान अनेत बिरकी छाया शिव रंग लाभ बिन से मन पछताब है ज्योति से सो चालन हाल लपट रहे होते अंध अंधार बटाऊ सो जो लावे ने ताको हाथ ना आवे के मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नान का बलय लाई मिथ्या तम धन कुटम सबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राजोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध बिगराल मिथ्या रथ हस्ति अशुभ वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेखस्था मिथ्या त्रोम अभिमान मिथ्या पुष्पुर कर तुकुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जब जब जीवा हर के चरण मिथ्या सर्वन पर निंदा सुनह मिथ्या स्पर दर्प को हिरे मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिरुपाद मिथ्या रसना भोजन स्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन पर पुकारा मिथ्या बास लेद बेकारा मिन मुझे मिथ्या सप है सफल दे नान घर हर नाम लय बिरथी सागत की आरजा साज बिना कह हो बस सुचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुखा बता के दुर्गंध मिन सिमरन दिन रैन ब्रेथा बेहाय मेघ बिना जो खेती जाए गोविंद भजन मिन मृथे सब काम जो कृपन के निरार धाम तन तन तेजन जेह घट बस्यो हर नाहू नानक ताके बल बल जाओ रह तबर कशबर कमाव

पाइये ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइये ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्मज्ञानी का सगल मन माहे ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्मज्ञानी का कथिया न जाय अदा खियर ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्मज्ञानी

निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते काश होए, तब उसको सुख नाई कोए, जब जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जून मैं फिरता, जब तारे गौ बैरी मी, तब लग ने चलना ही चीत, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभु कृपा दे बंधन टूटे, गुरप्रसाद नानक हो छूटे, सहस घटे लक उठता वे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे, अनक भोग बिख्या के करे, न तृप्ता वै खप खप मराय, बिना संदोग नहीं गौराजे, सुपन मनोरथ वृथे सब गाजे, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ भागी किसे प्राप्त होए, करण का नाम आपे आप सदा सदा नानक जाप, करण का नाम करने हास के आद कहाँ विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप प्रभ सोए, जो किसकी नो स्वप्न

अवतार अष्टपदी संत के दुख ने आर जा घटे संत के दुख न जमते नहीं छुटाए संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन सो बाते हीन संत के हाथे को रखे ना कोए संत के दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जी करे नानक संत संग निंदक भी तर संतन के दुखन काग जो लवे संतन संत के दुखन संतन संत के दुखन दे मुख पवे संतन के दुखन काग जो लवे संतन के दुखन सर्व जोन पाए संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए संतन के दुखन तृष्णा में जले संत के दुखन सबको शलय

जिस प्रभु ने कृपा कराए सो सेवक को किस तरह डराए जैसा सा तैसा दृष्ट आया अपने कार्ज में आप समाया सोदत सोदत सोदत सिजिया गुरप्रसाद तत्सा बुझिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सूखम सोई असूल नह के जन्मे न किस मरे आपन चलते आभि कर आपन जाम दृष्टान दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप आनक जुगत रजथाप उथाप अविनाशी राय किस खंड धारण धार्यो ब्रह्मंड अलख अपे पुरख प्रताप आप जपाए था नानक जाप जिन प्रभ जाता सो शोभा बंद सकल संसार उदरे तन मंद प्रभ के सेवक सकल उदान प्रभ के सेवक दुख विसारन आपे मेल लय कृपाल गुरु का शब्द जपे पय निहाल उनकी सेवा सोई लागे सुनु कृपा करे बटभागे नाम जब तो पावे विश्राम नानक दिन पर को उत्तम करमान जो किस करा सो प्रभ के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाए हो वैसो हो करने हर पछाणे सोए प्रभु का किया जन मीठ गाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिते उपजे तस माए समाए ओए सुख निधान।

विस्तार प्रभ अविनाशी एकंकार नाना जल्द करे घर माहे पूर्य पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बंत बनाई अपनी कीमत या पे पाई सब गढ़ दिसके सब दिसके ठाऊं जब जब जीवे नान खर नाम नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खंड ब्रह्मंड नाम के धारे सिमरत वेद पुराण नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के धारे आगास पाताल नाम के धारे सगल आकार नाम के धारे पुरिया सब पम नाम के संग उदरे सुन सरवन कर कृपा सबने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जान गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सात केवल प्रधान करतूत सात सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पात सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभु का सुविधाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत भजन साधु उपदेश सत जन जागा हृदय प्रवेश सत नृत बुझा जय कोय नाम जब ताकि गत होए आप सत किया सब साथ आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सुटसो करने हार अवरना भूज करत बिचार करते कीमित ना जाने किया नानक ज्योत सुभावे सोबर थिया।

अष्टपति जब अकारे गाशना दृष्टेता पाप बंधप कहते होता जब तारी अपन सुन समात बैर विरोध के संग कमाद जब इसका वर्ण चिहन्ना जावत हर सौ कह किसे व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्मता मोह का कि सोवत परम आपन खेला पर तीजा नान करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनिता बंद मुक्त कहो किसको गनी तब एक हर अगम अपार तब नर्क सुर कहो कौन आवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शक्त कहो के छाए।

कह दृष्टार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपे का विस्तार जा तस्भावित सठ उपाय अपने पाणे लाए समाय तुम ते पिन नहीं किश होए आपन सु सब जगत परोए जागो प्रभ जीव आप जाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी दत का बेता नानक सकल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सबता के हा दीन दयाल अनाथ को नाथ

अवष्टपदे पूरे गुरकासन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद मनंतरिक उतरय चिंद आस अनित्या गोत्रंग संजना की तूर मन मंग आप छोड़ बेंती करो सा संग अग्न सागर तरो हर तन के

कहते कर प्रसाद या प्रभु धारी नानक निभी खेप हमारी प्रभु की उस्त करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसे सोत निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सबते ऊज पाए।

मधुर कथना कथि नयाव तोट काथ काथ कथि कोटि कोट कोट बेंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाए हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे प्रवाहो साचा साहिब साजनाए भाख्या पाव अपार

लेख जाने लेख लेख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावे इंद इदासन बैठे देवत्या अंदर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा बछ पयाले।

की रिद्ध सिद्ध अवरा साध संयोग विजोग दोए कार चलाव लेखे आवे भाग आदेश तिसै आदेश आदे अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश।

धर्म खंड काए हो धर्म ज्ञान खंड काख कर्म केते पवन पाणी वैसंतर केते कान महेश केते भर में काढ़त घड़ी रूप रंग के वेश।

तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरा सिदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन मह राम रहया परपूर।

कथन करड़ा सार जात पहारा तिहज सुनियार अहरन मात भेद हथियार पाओ कला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित टाल घड़िए शब्द सटी टकसाल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेल सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर

कामे प्रियहं प्रियाशंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने चाचरी शांत

प्रथि से अधि से अधि से अकृ से भगवती शांत व प्रसाद कहते क्या छेज देश है क्या भेज भेसे क्या गांज कर्मे क्या पांच भरमें।

देहाद है के राज के रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गावन है के सर्वत्र पावन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता

के साहिब कला में के हुसनल वजू है तमामल रुजू है हमेसल सलामे सलीख तुम दाम है गनी बल सिकाहते गरीबल पराहते बिलंदर मकान है जमीनल जमान है तमीजल तमाम है रुजू वाल निधान है।

तेरे मुकत विभूत है, प्रभुकत प्रभा है, सोजुगत सुदा है, सदैव स्वरूप है, अभेदी अनूप है, समाहतो पराज है, सदा सर्वसाज है।

कि सर्वलोकवान है हमें सलेरवान है तमामल तमीज है समाहतल अजीज है परम परम ईस है समाहतल अधीश है अदेसले अलेख है हमें सले अपेख है

होए प्रसाद। मन मन प्रणाम गुण गन मदाम वर बर गंज हर नर प्रभंज। अन गन प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड। अन पवह नाश मन मन प्रकाश गुण गन प्रणाम जल थल मदाम। अन सिंह अंग आसने अभंग उपमा पार गत मिति उदार। जल थल अमंड दिस विश अभंड जल थल महंत दिस विश बेअंत। अन पवह नाश त्रित तार तू रहास।

करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्व पास है, सर्वनाश है, करुणा कर है, विश्वम्पर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्म

धरनी धृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, कृता कृत है, अमृता मृत है, अजबा कृत है, अमृता मृत है, नार नायक है, खर कायक है, विश्वम्पर है, करुणालय है, निरपनायक है,

नाग ही पाए पदहरे जीत फिरै सब देश दिसान को बाज धोल मृदंग नंगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख पवान के पूबत कौन गणे नहीं जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भजे बिनवंत कवंत के तहम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक बसेखे वेद पुराण कतेव कुरान जमीन जमान सुबान के पेखै पौन आहार जति जत तार सब सो विचार हजार क देखै श्री

कियो। कर कर के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पशांत जीटी ते कुंचर तूला सब पर कृपा दृहत कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी।

कहूँ सुमिट भयो शंकर इकैठा। शिगरी सृष्टि दुखाय अचंप वाद जुगाद स्वरूप स्वयंप अवरक्षा मेरी तुम करो सिख उभारे सिख संग्रो। दुह तिज ते उठवति उत्पाता सकल मलेश करो रन कहता जे अहित तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुह तुह वाय मरे।

रहे कर्म कमाए। सहसे जियो मलीन है किद संयम धोता जाए। मन धोवो शब्द रंगो हरसे रहो चुतलाए। कहे नान गुर प्रसादी सहज उपजाए। इस सहसा में जाए जियो मैले बारो नहीं मिल, बारो नहीं मिल जियो ता मैले। तिन जन्म जीवे हारिया

हारिया। जी हो निर्मल बार हो निर्मल बार होता निर्मल जी हो निर्मल सतगुर ते करनी कुमानी कूड़ की सोए पहुचे नाही मन सा साठ समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुरनाले।

पे हुक्म जाए। सिमरत सातर पुन पाप विचार दे, तत्तै सार न जानी, तत्तै सार न जानी, गुरु बाजो तत्तै सार न जानी। तिही गुणी संसार भ्रम सुता, सुते आरैन विहानी। गुर कृपा ते सेजन जागे, जिन्ना हर मन वस्या बोले, अमृत बाणी कहे नानक सो तत पाए, जिसनों अंदर हर ले लागे, जागत रैन विहानी।

महाराज जीयां दा धन्नवाद आप सरबत संगतां दा और प्रबंधक वीरां दा गुरु के वजीरां दा बहुत बहुत धन्नवाद सत्संग जी समय की समाप्ति है फतेह दी पंक्तियां पढ़ीए फतेह बुलाईए जी।

निकसिया क्यों कर जाए कबीर मुक्त द्वारा संकुड़ा राई दसवें पाए मन तो मैं गल होए रहा निकसिया क्यों कर जाए

पावड़ी प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता गणते प्रभु न पाइए दूजे परमीता सतगुर मिले जीवत मरै बुझ सच समीता शब्दे होमै खोइए हर मेल मिलीता सबकी जान करे आप आपे विगसीता शब्दे हमें खोइए हर मेल मिलीता

0: ज्ञान खंड का आख हो कर्म
1: केते पवन पाणी वैसंतर केते खान महेश
0: केते बरमह केते बरमे काट कड़ी यह रूप रंग के वेश
1: केते आकर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश
0: केते इंद चंद सूर केते।

0: पीतः
1: त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है
0: अनिल है नाद है अजय है अनजाद है
1: अजन्म है अबाण है अपूत है अपान है
0: अगंज है अपंज है अचूज है अजंज है
1: अमीक है रफीक है अतंध है अपंद है
0: बूझ है असूज है अकाल है अजाल है
1: अला है अजा है अनंत है महंत है
0: अलीग है निसरीग है नलंब है असंभ है
1: अगम

0: समस्त पराची समस्त स्थान
1: जले हैं थले हैं पीन हैं पे हैं
0: प्रभु है जो है देश है अपेश है
1: पूजा प्रयासन गादे अवादे आनंदी स्वरूपे
0: मुसलमान समस्ती
1: नदाने नमस्तों ने नाथे नमस्तों
0: परमाथे नमस्तों गंजे नमस्तों अपन

0: जागे जात पास नाम
1: गर्भ गंजन दुष्ट पंचन मुक्त दायक काम
0: अवरूप अमीकन उस्त एक पुरख अवधूत
1: गर्भ गंजन सर पंचन आदरूप सूत
0: अंगहीन भंग नादम एक पुरख पार
1: सर्वदायक सर्व कायक सर्व कौपत पार
0: सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख
1: सर्व शास्त्र न जान ही रूप रंग अरेख
0: परम वेद प्राण जाके नेत पाख नेत
1: गोत सिमरत प्राण शास्त्र न आवे वो चित्त
0: मद पार सिमरत प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार
1: आसन अपांग उपानांग
0: अनुभव प्रगाढ़ निर्दिन अनास
1: आजम।

0: Agade, Aganje, Agade,
1: Sabang Sarvrake, Sasarvan Arake,
0: Trubot, Ruha, Shija, Chudha,
1: Kinarkan Pranasa, Patuel, Navasa,
0: Ruha, Sadavan Sadaha,
1: Prabukta Sarupa, Producta, Nupa,
0: Sadaha, Prabukta, Purvaha,
1: Anokta Sarupa, Producta, Nupa,
0: Jaji Shan, Abaghan, Agaha, Vikhanikha,
1: Barmha, Karmha, Natha, Jagadha,
0: Jaha, Baha, Pudha, Dutha,
1: Nasa, Dasa, Tandha, Bandha,
0: भक्त है विरक्त है नाश है प्रकाश है
1: निचिंत है सुनिंत है।

0: पांग है और दोबारा चंद दुआ प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गण मदाम
1: और बर गण हर नर भगवान जय
0: अन गण प्रणाम मन मन सलाम
1: नर खंड बर नर मंड अनुभव नाश मन प्रकाश
0: गण गण प्रणाम जल थल मदाम
1: अंचे अंग आसन अभंग
0: उपमा पार गत मित दार
1: जल थल मंड देश सुपंड
0: जल थल महंत देश विश्वंत
1: अनुभव नाश तर तुरास
0: आजन भाव सहन साह
1: आजान भाई के साह ओंकार कथनी नाद
0: खंड ख्याल कर बिरकाल
1: कर कर हुनाम चित चरना
0: आंचेज गात आजेज न बात
1: आचाज गात हनाज बात
0: अंतोत प्रतार अंतठ पार
1: अडीस्तन मटीठ कर्म
0: अंपर प्रणांत मताता महंत
1: हर बोल मना शांत अब सद करना ले है रकाल ले है
0: कल खंडल है मल मंदल है
1: जगतेश्वर है परमेश्वर है
0: कल कारण है सब वारण है
1: तिरके तन है जग के कारण है
0: मन माने है जग जाने है
1: सर्वों पर है सर्वं कर है
0: सर्व पासे है सर्वनाशे है
1: करणा कर है विश्वों पर है
0: प्रभदेशर है जगदेश्वर है
1: मंडस है खलखंडस है
0: परते पर है करना करना
1: करना कर है अजपा जप है सब बात है
0: कृता कृत है अमृता अमृत है कृता कृत है तरणी कृत है
1: अमदेश्वर है परमेश्वर है
0: कृता कृत है अमृता अमृत है
1: अजवा कृत है अमृता अमृत है
0: नायक
1: नायक है कलकायक है
0: विश्वंबर है करनालय
1: नायक है सर्वायक है
0: पंजन है और गंजन है
1: तापन है जब जापन है
0: अकलंग कृत है सर्वा कृत है
1: कर्ता कर है हरता हर है
0: परमात्म है सब आत्म है
1: आत्म बस है जस के जस है प्रयास नौ सूर सूर्य नौ चंद्र

0: पवित्र होए से जना जिनी हरते आया
1: हरते आया पवित्र होया गर्मकशनी ते आया
0: पवित्र माता पिता कुटुंब सहित से पवित्र संगत सभाया
1: केंद्र पवित्र संदे पवित्र से पवित्र जने
0: कहे नानक से पवित्र जिनी गर्मख हर हरते आया
1: परमेश्वर चना उपजे सच सच
0: न जाए सहसा कित

0: जपिए सारंग पाणी
1: कहे नानक सदा कावे होए सच्ची बाणी।
0: सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी,
1: बाणी तो कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी।
0: कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख बखाणी,
1: हर नित कर सुसना कछु न जाने।
0: चित चित जिन जाका हिर लाया माया बोलन पावे रवाणी,
1: नानक सतगुरु बाजे होर कच्ची बाणी।
0: गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ा हो,
1: शब्द रतन जिन मन सागा हो होरा सुनाओ।
0: सब छेती मन मिलिया सच्चे लाया पाओ,
1: आपे हीरा आपे जिसनो देह बुझाए।
0: कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ा हो,
1: आपे हुक्म रताए
0: आपे हुक्म वरताए। आप वेखे गुरमुख किसे बुझाए,
1: थोड़े बंधन होवे मुक्त सब मन मसाए।
0: गुरमुख जिसनो आप कर...

0: हर मंगल गाओ सखी गंगाधर करिया।
1: हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख न व्यापे।
0: गुर जान लागे दिन सुभागे, अपना पैर जापे।
1: अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो।
0: कहे नानक प्रभु आप प्रभु अंत कारण जोगो।
1: ए श्री रामेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाए।
0: के कर्म कमाया तुद में श्री राम, जा तू जग में आया।
1: जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया।
0: गुर प्रसादे हर मन वसिया, पूर्व लिखिया ना।
1: कहे नानक ए शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर सौ चित लाए।
0: ए नेत्रो मेरे ओ सच सो,
2: ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम में जो सरी हर में अपना देखो।

मात पिता हम वारस तेरे। तुमरा अंत उचित ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सुरता तुम से हो। तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु अरदास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक।

की वस्त्र सोई ले जाएगा, रोस किसे सो की जाए। जो इंसान इस दुनिया में आया है उसने एक दिन जाना जरूर है, एक सच है। जो ये सच उस परमात्मा के हाथ में है, इंसान ने किदों जाना, किदा जाना, कितने सारा समा उस परमात्मा के हाथ में है। सो गुरु महाराज कृपा कर परिवार को भाणा मनण का बल बख्शन। सो एक शब्द की हाजिर लवा के आप उस तो बाद आनंद साहब का जाप करांगे। अब की वार बख्श बंदे को बहुर ना पौजल फेरा, गुरु महाराज कृपा कर उस विछड़ी आत्मा अपने चरणों में निवास बख्शन, आवागमन के चक्कर चो बचा के रखन। आओ सारे रल के शब्द हाजिर लाइए, अब की वार बख्श बंदे को बहुर ना पौजल।